प्यारा प्रभु मेरे का बड़ प्रताप जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कही है मन की दुविधा बिनस जाहे परम पद लही बलिहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार करत ना लागी वार परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों अज किन्ने भागा वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटिया बाद आपां अलविदा कर देना ते उस 1999 नू जी आया कहना जिस दा खास करके सिख जगत दे अंदर बड़ा चा ते उमा दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी अंदर अज ओ भी लोक होणगे जेड़े नशे विच गुट होणगे जेड़े नट टप रहे होणगे पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोक इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने मेरे साहिब तू अपणियां नूं बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले हजूर ने बाणी विच क्या अगन सागर बूढ़त संसारा नानक बहां पकड़ सतगुरु निस्तारा कुर्बान जाइयो उस गुरु तो जिन्ने सानू बाणी दित्ती जिसने कृपा करके सानू साध संगत दित्ती जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दित्ती नाम दी दात दित्ती ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नू तक के गल कही सी के गुरु कोल भी केवल ओ बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है जा जो गुरु नू इश करदा है ते उत्थे ताई हजूर ने कहा सी के कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुरु पास गुरु मेहरामत करे मैं अर्ज कर रहा अपने उस प्रसंग नू वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनों तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जान खास करके मेरे बुजुर्ग बैनिकवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वा आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤਖ਼ਤ ਏ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰੰਕ ਲੜਾਊ ਸ਼ੇਰੋ ਕੇ ਸੰਗ ਭੇਡ ਪੜਾਊ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾ ਲਾਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ
तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। ध्यान रखना ए आवाज आज तो 300 साल पहला आनंदपुर की धरती तो उठी ते उस आवाज नू कोई दबा नहीं सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन 99 आपा तकने पया इन जी आया कह रहे हैं, पर प्यारियो ए 300 साल तकने 400 साल शायद साडे विचो कोई तके ते आए साल जा ए समय ता ही सफल है जे किते गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच अज अरदास कर दिए कि मेरे दातिया तेरा ए 300 साल खालसे दा साजना पुरब आ रहा है, तू कर निरामत इन्हां सुक्यां किरदियां विच अमृत दी झड़ी ला दे, तू विछड़ियां नूं मिला लै। ओही आनंदपुर दी धरती है जिथे कदी कुछ कागज ते लिख के चले गए सन बदावा दे के, पर अज कृपा कर कागज नहीं साडे तां मना उत्ते बदावे लिखे हुए ने। शायद तू इन्हां मना नूं धो दे, ए बदावे दी जड़ी काल के उतर जाए ते दातिया महा सिंह दी तरह गोद विच तू ही सानू लै के कह दे नहीं होए अखां विचो नीर ना छट महा सिंह तू मेरा ही है। गुरु बख्शिश करे प्यारियो जिथे आपां 99 दा साल आ रहा मैं कह के अगे तुरना वा, अज साडी जिंदगी दा एक साल घट भी गया है। जिथे नूं जी आया कह रहे हैं ना, हजूर ने बाणी विच कह कहिंदे ने जदों मां दी गोद विच पुत्र हुंदा है मां लोरियां दिंदी है ते जदों उस बच्चे दा जन्म वाला दिन आउंदा है साल बाद ते असी रिश्तेदार साख संबंधी इकट्ठे करने आ ते कहने आ अज मेरा पुत्र इन्ने साल दा वड्डा हो गया है। पर भगत कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब विच कहिंदे ने नहीं मां ए ना क्या कर, जन्म वाले दिन तू कहनी है मेरा पुत्र वड्डा हो रहा है, कर कदी अपने सिर ते झाती मार, तू गोदी विच लै के लोरियां देनी है के जन्म दिन वाले दिहाड़े नू शांडल मनानी है, पर नहीं मां ए वड्डा नहीं हो रहा ए असल विच दिनों दिन घटदा पिया। असल विच साडी जिंदगी विचों भी एक साल अज घटिया नहीं। हजूर ने बाणी विच कहा जननी जानत सुत वड्डा होत है, पहली पंक्ति ए भगत कबीर साहब जी दी गुरु ग्रंथ साहब विच, जननी जानत सुत वड्डा होत है इतना कु ना जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर मेरा मेरा कह के अदक अदक लाड धर, किन्ना प्यार करनी है पर पेकत ही जमराओ हसै, मौत त्यों वेख के हकदी है दिन वधदे नहीं पए दे घटदे पए। आपां याद रखिए कि अपना उस दिन नेड़े आउणा है। आओ साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता सरबंश दानी जिन्हां दे पवित्र इतिहास नूं कल भी आप संगतां नूं सांझा कीता सी, मेरे साहब दे वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए ने। शाम दा वक्त है उधर सूरज छिपया है, उधर कलगी वाले दे छोटे साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी ने शहादत दा जाम पीता है ते मेरे गुरदेव ने अज भी सोदर रह राज साहब दा पाठ कीता है। आओ हजूर किवें चमकौर विचों निकलदे ने, किन्ना किन्ना राह ते मेरा माही जांदा है ते की अपने उस अकाल पुरख नूं संबोधन करदा है। आप उस इतिहास नूं अपनी नजर सामने लियाईए ते सुरत नूं उस धरती ते लै जाओ जिहड़ी साडे तों सैकड़े को दूर है, पर ध्यान नाल कलगी वाले दी उस धरती दी शो सुरत राही उहदी खाक नूं नमस्कार करिए। करो कृपा मैनूं आसीस बख्शो, कोई भी रचना हजूर दी बख्शी फतेह तों वांझी ना रहे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप जी दे दोनों साहबजादे शहीद हो गए ने ते भाई साहब भाई दया सिंह जी गुरा ने सोदर रह राज साहब जी दे पास तो बाद हजूर दे चरण पकड़ लै सन, सिख संगतां ने हजूर दे चरण गुरु के सिखां ने पकड़े ते एथी बेनतियां अरदासां कीतियां सन, मेरे दाता तुसी चमकौर दी गड़ी नूं छड़ दिओ। कल मैं इस विशे संबंधी अर्ज कर चुका, जदों हजूर निकलन लगे ने ते एक गल कही दया सिंह इकला नहीं मेरे नाल तुसी भी जाओगे, सिख इकट्ठे होए ने गुरमता कीता है, नाल निकलन लगे ने भाई साहब भाई दया सिंह जी प्यारे भाई धर्म सिंह जी ते तीजा जिहड़ा गुरु का सिख निकलिया ओहदा नाम है भाई साहब भाई मान सिंह जी।
ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਇਹ 22 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1704 ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਦ, ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਮੇਰ ਵੱਦ, ਤੀਜੇ ਪਾਸਿਓ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨੂੰ ਆਪਣਾ

मेरे दादा जी दे चरण जड़े ने ना किसे कपड़े दे विच अड़ गए सन। झूठ नहीं ओदी लिखते, उन्होंने आप अपने हथां ने अंकित किया। जदों हजूर निकलन लगे चरण साहब दे किसे कपड़े न अड़े ने, भाई दया सिंह उस वक्त नाल ने, कहिंदे आसमान तो बिजली चमकी ते देखिया कि चरण अटके किथे पए ने, कपड़ा किसे होर दा नहीं अपने वड्डे पुत्र बाबा अजीत सिंह ने, ते उन्हां दे चोले विच पिता दे चरण अटके हुए। जदों चरण अटके तके ने, प्रोफेसर करतार सिंह लिखदा है सह मुस्कराए ने ते आशीष दित्ती है। वो एक गल कहिंदा अपने कोलों वो लिखदा है, कहिंदा मेरा मन तां कह रिहा सतगुरु जदों तुसी बाबा अजीत सिंह नूं गढ़ी विचों तोरिया है, ते एक गल कही सी पुत्तर तू गुरु तेग बहादुर जी दा पोत है, गुरु हरगोबिंद साहिब दा पड़पोत है, देखी तेरी पिठ विच कोई वार ना होवे, तेरी सीने विच तेरी छाती विच तां वार होण, तीर दा बरशी दा बंदूक गोली दा जे पिठ विच होया लोग कहणगे शायद ए मैदाने जंग विचों पिठ दिखा के दौड़दा सी तां पिछे वार कीते गए। कहिंदे मानो ओ बोल के कह रहा होवे पिता जी कि देखो मैं नहीं अपने चोले न रो के बापू मेरी छाती नू तक ले, मेरे सीने विच ता जख्म है पर तेरे पुत्र दी पिट विच कोई निशान नहीं, मैं तेरी इस दस्तार नू दाग नहीं लगन दिता। प्रोफेसर करतार सिंह लिखदे ने थोड़े जे अगे निकले ने ते छोटे पुत्र बाबा जुझार सिंह उन्हां वल तकिया, उन्हां दा शरीर भी नजर आया ते भाई साहिब भाई दया सिंह जिन्हां बारे असीं कहिंदे आ कुछ कहिंदे ने कमर कसा, ओह कहिंदे ने अपने उन्हां कोल इक चादर है, हजूर नूं रोक के कहिंदे ने सतगुरु तुसीं अपने तीरां नूं सोना क्यों लाया सी, कहिण लगे दया सिंह इस करके कि मेरे तीर दे नाल कोई जख्मी हो जाए ते सोना वेच के ओहदा जख्म भरन लई ओहदा दवा दारू कीता जाए, मेरे तीर दे नाल किसे दी मौत हो जाए ओहदे खपण दा ओहदे कबर विच दफनान दा प्रबंध कीता जाए, ओहदे चिता विच लकड़ां इकट्ठियां कर ली पैसा वरत्या जाए। भाई साहिब दे नेत्र भर गए सेजल हो गए, कहन लगे पिता तू तां दुश्मनां दे पुत्रां दी लाश भी रुल नहीं देंदा, तेरा तीर चले ते तुसी कहिंदे हो दुश्मन दे खपण दा प्रबंध हो जाए, दुश्मन दे चिखा दा प्रबंध हो जाए, तुसी तां मर चुके दुश्मनां दे पुत्रां दीआं वी लाशां ढकण वास्ते प्रबंध करदे हो, पर अज तेरे पुत्रां दे तन नूं कौन ढकेगा, तेरे पुत्रां दे तन तां उसे तरह पए ने, जे कृपा करो तां मैं इह चादर तेरे पुत्रां दे शीश ते पा दिआं, इन्हां दे मुख नूं ढक दिआं। ते हजूर ने उस वक्त बांह पकड़ के कहा सी दया सिंह जी मैं इक गल पुछनी चाहना, इह ने दो मेरे बिंदी पुत्र, आ गुरमुखा ने अमृत की गल की ते जदो ऐस दास्तान नूं असीं पढ़ने आ साडा मन क्यों नहीं पिघलदा, कहन लगे इह ने मेरे बिंदी पुत्र ते जिन्हां ने अमृत छकिया इह ने मेरे नादी पुत्र। ध्यान रखी दो बिंदी पुत्र ने अजीत ते जुझार, दया सिंह चादर एक है, जे अजीत ते जुझार नूं ढकना चाहना ते एक काम कर दे पहला प्यारे भाई हिम्मत सिंह दे तन नूं ढक दे, भाई मोहकम सिंह दे तन नूं ढक दे, भाई साहिब सिंह दे तन नूं ढक दे, जे मेरे पुत्रां दे दूसरिया जोगा तेरे कोल कपड़ा नहीं ते मेरे इन्हां पुत्रां दे उत्ते तू बस्तर ना पाई। हजूर चमकौर दी गढ़ी कोलों निकल गए ने, कदी तको खां अपने हिरदे विच झाती मारिए, जे पुत्र दी मौत हो जाए ना ते मां बाप ओदी तस्वीर नूं देख के जदों किते घर विच वड़दे ने सामने जा चुके पुत्र दी तस्वीर आ जाए ते भुब्बा मारदे ने, उन्हां तों पुत्र दी तस्वीर नहीं देखी जांदी, वाह मेरे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता दोनों पुत्रां दीआं लाशां कोल पईआं ने पर तेरे वर्गे आ हिल नूं अंदरों कोई डुला नहीं हो सकिया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह निकले मैं जड़ी अर्ज करनी चाहना बाद भी चमकौर दी गड़ी किवें होंद विच आई, क्योंकि इथों तक आपां सारे तुरने आ पर जितनी कु सूझ साहिब ने बख्शी हजूर तो तिन्ने सिख विछड़ गए ने। 22 दिसंबर की रात निकली है ते चमकौर की गढ़ी विच रण सिंगा वजदा पिया है ते दुश्मन सोचता है कि गुरु गोबिंद सिंह चमकौर की गढ़ी अटारी विच बैठा है, पर असल विच ए सी गुरु का सिख भाई संगत सिंह जी, किन्ना माण है अपने शरीर की परवाह नहीं

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं, ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा, तेरे तो ओले कदे ना होसा, मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है, तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए, ते जिदन भाई लैणे नूं गुरगद्दी दित्ती, लैणे तो गुरु अंगद बने, पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई, उन्हें एक शब्द कहा सी, दाता ले गद्दी तां सेवक नूं मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा, इन्हां दा प्रसाद पाणी। ते गुरु साहब ने जिहड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने, कहन लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही, एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामातां होणगियां, ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनेंगे। उत्थे इक शब्द क्या, कहन लगे ए बाबे के होणगे, बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे, ते जोत जिहड़ी ए गुरु अंगद साहिब दे कोल होवेगी। उत्थे शब्द क्या, गुरु घर के जे होए सवाना, जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना, लोग उन्हां दी पूजा करनगे। अज गुरु नानक साहिब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी, ते विच विचोला कौन बन गया, बाबा बुढ़ा जी। पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जिन्हों बाबा बुढ़ा जी ने लाया, गुरु नानक साहिब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने। फिर साहिब ने कहा, बुढ़िया मैनू हुण छड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहिब दे चरणां विच कर। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहिब तो बाद मत्था टेकिया। भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहिब नूं हुक्म हो गया, क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे, बाबे बुढ़े दे जीवन नूं

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी ध्यान लइया पौ मुकह गुर अमरदास परसी अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रह जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीतियां ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी किरपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने ए सत्तरिया बत्तरिया गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलखणता कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नू गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वो कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभण तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे होए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नू होया 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना है, दान पुन करना है, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरते है, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना है। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना है। ते अज 20वीं वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनू पिंड मिठड़ा भी कहा जाता है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी की सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते की थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे ते ओ विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी। ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि उहदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्यां उहदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज ये भी उस

पंडित अपने घर तो बाहर निकलिया, बाग विच पाए हुए यात्रियों के कोलो लंघिया, ते ज्योतिष विद्या का माहिर कहिंदे उस वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरना दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरना दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरना विच खलो गया। कहन लगा, हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे इहदे चरना दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते इह आउण वाले समय दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ते जां इह आउण वाले समय दे अंदर अध्यात्म वर्ती बहुत उच्चा महापुरश होवेगा। कितना समा वह बाबा जी दे चरना दे पद्म नू देखदा रहा। बाबा अमरदास जी उठे, ते उठ के जदों अगे तुरन लगे, ते उस वक्त सोचिया, जिस पंडित ने इतनी सेवा कीती है कितना चंगा होवे, जान लग्या मैं कुछ ना कुछ इन्हां नू माया दे दिया। अपनी बांसुली थैली खोली, कुछ कु माया आवाज दे के कहन लगे, पंडित जी तुसी आउण जाण वाले यात्री नू विश्राम लई थां देंदे हो, ते मैं चाहना कुछ सेवा तुहाडी करां। ते उस वक्त इस दुर्गो पंडित ने हाथ जोड़ के कहा, कहन लगे, बजुर्गा अज नहीं, कदी समा आउणा है, मेरी गल याद रखी, जां तां बनेगा बहुत उच्चा भारी सम्राट तू राजा, ते जां बनेगा बहुत उच्चा अध्यात्मक वर्ती महापुरश, मैं तेरे दर ते मंगण आवांगा। अज मैं थैली दे पैसे नहीं लैणे, जितन ए रेखा रेखा फलेगी, जितन तेनू भाग लगेगा, उदन मैं झोली अड के अपने आप तेरे दर तो मंगण वास्ते आवा। सतगुरु बाबा अमरदास मन विच प्रसन्न भी होए, कहन लगे, पंडित मैं ता कितना समा होया गंगा इशनान करन जाना वा, अजे तक ओदे दीदार नहीं होए, अजे तक मेरे अंदर दा टिकाओ नहीं मैनू मिलिया, ते ए रेखा की करेगी। ते पंडित ने कहा, कदी समा आवेगा ए रेखा भाग जरूर लाएगी, ए चक्कर चिन्ह जेड़े मैं पढ़े ने बिल्कुल सच होणगे। कहिंदे ने, बाबा अमरदास वापस पिंड बासर के आउंदे पए ने, जिथों गुरगद्दी वाले पासे नूं आपां अज तुरना। जदों वापस आउंदे पए ने ते एक ब्रह्मचारी मिले है, इतिहास इहदे बारे खामोश है कि उस ब्रह्मचारी का नाम की सी, इन्हां ते दस दिता, जिन्हें पद्म पढ़िया पद्म देखिया उहदा नाम दुर्गोवे, पर उस ब्रह्मचारी का नाम नहीं पता जिन्हें बाबे अमरदास के नाल कुछ समा संगत की थी। भाई वीर सिंह लिखते ने, करीब एक महीना ब्रह्मचारी बाबा अमरदास जी के नाल रहे, तुरद्या तुरद्या सफर मकांद्या ये अपने पिंड बासर के आ गए, ते अज ब्रह्मचारी की शाम नू जदों जल पानी नाल सेवा बाबा अमरदास कर लगे, ते इस ब्रह्मचारी ने पानी का गिलास हाथ विच पकड़िया, ते इको दम सब तो पहला ए सवाल कीता, बाबा आपां कितने दिनां तो इकट्ठे तुरे आउने आ, तू प्रभु दियां बातां भी बड़ियां करने, तू गंगा मैया दी सिफत दे गीत भी गाने, पर मैनू अजे तक तेरे तो एक गल पुछनी याद नहीं रही, मैनू दसेगा तेरे गुरु दा नाम की है, केड़ा गुरु वे जिदे चरणा विच टेक के तू दात लईए, केड़ा गुरु वे जिदे मंत्र नू तू जपना है। ते उस वक्त बाबे अमरदास दे पैरां थल्ले जमीन निकल गई, खिरदा कंब उठिया। ब्रह्मचारी कहिंदा, बाबा तू बोलदा नहीं, दस पां सही तेरे गुरु दा नाम की है, ते अखां विच नीर भर के कहन लगे, अजे तक नगुरा हूं, अजे तक मालक वाला नहीं, लभना ते प्यावां पर अजे तक वह मैनू लभिया नहीं। जदों इन्ने शब्द सुने ते ब्रह्मचारी ने यही गल कही, कहन लगे, हे प्रभु मैनू बचा दई, ए बंदा इशनान भी गंगा दा कर दई, बातां भी तेरे घर दियां करदा, पर अजे तक गुरु वाला नहीं बनिया, इसो जै नगुरे दी संगत करके मेरा खादा पीता भी परवान नहीं, इस नगुरे दे हाथ दा की खाना। इन्नी गल जान लग्या कह गया अमरदास अपने केसां वल तक, केस तेरे कालियां तो दुध वर्गे सफेद हो गए ने। हुण याद रखी, जवानी तो बाद जिहड़ा बुढ़ेपा है, एक केवल मौत

खाली होवे। हर एक दा अंदर रंगया है, अंतर सिर्फ इतना किसे दा कुसंबे दे रंग न रंगया है, किसे दा मजीठ दे रंग न रंगया। धन गुरु ग्रंथ साहिब विच साहिब कहिंदे ने कोई अंदर रंगण तो बिना नहीं। कईयां दे अंदर दे चोले लालच दे रंग विच रंगे ने, लालच दे रंग विच रंगे हुए चोलिया नेड़े कदी भी वाहिगुरु की कृपा नहीं। ते कई चोले ऐसे ने जिहड़े नाम दे रंग विच रंगे ने, ते गुरु नानक साहिब कहिंदे ने इहो जिहां दे चरणां दी धूड़ मैनू मिल जावे। सतगुरु ने वचन कीता, कहन लगे ए तन माया पाया प्यारे, लीतड़ा लभ रंगाए, मेरा कंत ना भावै चोलड़ा प्यारे। ए चोला मेरे वाहिगुरु नूं नहीं पौंदा, क्यों धन सेजै जाए, किवें तेरे हिरदे दी सेज ते वाहिगुरु आवे, तेरा तां चोला ही अंदर दा लालच रंगिया। अगे हजूर कहिंदे ने पर जिन्हां दे नाम ने रंगे ने, काया रंगण जे थिया प्यारे, जे अंदर नूं रंगणी। इथे पाठ है काया रंगण, रंगण दा अर्थ ए नहीं रंगना, इथे रंगण दा अर्थ है ओ भांडा जिदे विच ललारी रंग पा के कपड़े रंगदा है। साहिब कहिंदे ने काया रंगण, इस शरीर नूं एक ललारी दा भांडा बना लै, काया रंगण जे थिया प्यारे, पाई है नाम जीत, एदे विच नाम दा रंग पा दे, रंगण वाला जे रंगा है साहिब, ऐसा रंग न दीत, जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास, धूड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। सतगुरु ने कहा ऐ मनुख तू बाहर दे रंग नू छड, तू अंदर नू रंग लै। ते महाराज ए रंग कदी उतरदा नहीं। सतगुरु बाणी विच कहिंदे ने ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। ए रंग लगदा किन्नू वे? साहिब कहिंदे ने हर रंग लागो जिन्नू हरी दा रंग लग जाए, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। ते जिन्नू अंदरो रंग लग जाए ओदे बारे गुरुदेव बाणी विच वचन करदे ने, लाल रंग तिस को लगा जिसके वडभागा, मैला कदे न होवी नह लागै दागा। ते जिदा अंदर नहीं रंगया, गुरु ग्रंथ साहिब ने बड़े प्यारे वचन कह लगे अपने शरीर वल कदी झाती मार, जन्म नूं कुछ समय बाद दंद मिले जेड़े मोतियां दी तरह चमक दे सन, सारी उम्र इन्हां दंदां नाल चबा के खादा, दंद घस गए, दंद भुर के मुंह विचों निकल गए, सारी जिंदगी इन्हां अंगां नूं सवारिया, सोहणे तो सोहणे वस्त्र पाए इस शरीर ते, शरीर दे अंग भी घस गए, ए भी खत्म हो गए। ते सतगुरु कहिंदे ने बड़े अफसोस दी बात, खांदियां दंद घस गए, पांदियां शरीर घस गया, सारी उम्र लग गई, पर जे अजे तक नाम दा रंग नहीं लगा ते तेरा जीवन तिरकार जोग। अंदर नूं क्यों नहीं रंगदा? हजूर ने वचन कीता, कहन लगे खांदियां खांदियां मुंह कठा, कठा दर ते घस गया, तै नंदियां सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया जिना सच ना लगो रंग। उन्हां दा जीवन तरकार जोगे जिन्हां नूं अंदर सच दा रंग नहीं हो लगा। साध संगत मैं अगे तुरा, सतगुरु ने अंदर रंगन दी गल कही, होला महला एदा अर्थ की? पहला आपा एदे बारे बेनती कर लिये, होला शब्द जेड़ा ए फारसी दा, महला शब्द जेड़ा ए अरबी दा। होला दा अर्थ हमला, महला दा अर्थ थां, एदा अर्थ बनदा हमला अते हमले वाली थां, ओ थां जिथे हमला कीता जाए। होला महला जेड़ा भाई कान सिंह दे नाभा दे मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कलगीधर स्वामी ने सिखां विच शस्त्र अभ्यास नूं, शस्त्र विद्या दे अभ्यास नूं परपक रखण वास्ते शेत सुधी एक नूं ए मेला जेड़ा ए महला आरंभ कीता सी शस्त्रां दी विद्या लई। ते मैं अर्ज करा शस्त्रां दी लोड़ क्यों में? आ कई वारी सवाल भी बड़े उपजदे ने, शस्त्र क्यों पकड़े? ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने पहला दो कृपाना पाईयां ने, एक बड़ी पुरानी लिखत पढ़न दा मौका मिलिया, ओदे विच गुरु अर्जन साहिब नूं कहा महाराज तुसी शस्त्र नहीं पाओगे। सतगुरु ने एक रमज भरपूर बचन कहा, कह लगे पावांगे, असा शब्द दी प्रीत करके पीर दी पीरी खिंच लैणी है, ते शस्त्र दी प्रीत करके मीर दी मीरी खिंच लैणी। बड़े कमाल दे भावपूर्वक बचन सन, शब्द दी प्रीत

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, सुदामा अपदा ते राखिया, गणका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए, राखो दास पाठ की लाज।

शरीर नु तो लेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभा नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: रोज
1: अमृत सिंचन नाल भी निम का सहज नहीं जाता, भाव सुभा नहीं बदलता। सहज का अखरी अर्थ सुभाव, क्योंकि जेड़ी गल सुभाव च शामिल हो जाए, जेड़ी गल सुभाव च शामिल होवे वह मनुख सहजे कर लें, जेड़ी गल सुभाव च शामिल ना होवे जे वह करन दी कोशिश भी करे तो वह करन लग्या उसनू उचेच करनी पैंदी। इसलिए सहज लफज सुभा नाल शामिल हुंदा है, सहज सुभाए होए सो होए। सहज हमेशा उस गल विच हुंदी है, उस काम विच हुंदी है जेड़ी सुभाव च शामिल हो जाए। तो हजूर दा कहन दा भाव है, कहने निम नू कोई अमृत सिंच लाए पर उनका सहज नहीं जांदा, भाव उनका सुभा नहीं बदलता, क्योंकि निम नू अमृत तो बाहर पाया गया है ते सुभा उनके अंदर है। इस तरह हजूर कहते ने कई गल्लां मनुख दे तन नाल सांझ रखदियां ने, बाहर नाल सांझ रखदियां ने। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, तन मैला हो जाए, तन उपर दी चीज है, इनू मैल बाहरों लगनी, बाहरों पै खाक मिट्टी ते तन ते मैल चढ़ जाए, ते उस मैल नू बाहरों पई मैल नू उतारन लई बाहर पानी दी लोड़ है। तन दा कपड़ा मैला हो जाए, साबण दी जरूरत है। हजूर कहंदे ने भरिए

और ए भी नवा इतिहास लिखण लग्या। अजे मैं समझदा मौजूदा दौर दे ते खोजियां नूं बड़ा वक्त लगेगा, कितने घर उजड़े ने, कितने बच्चे यतीम होए ने, कितनियां अबलावां दी असमत लुट्टी गई है, कितने सुहागणां दे सुहाग लुटे गए ने। ये अजे नवें सिरों लिस्ट बनेगी, ये ते अजे नवें सिरों छानबीन करनी पेगी, अजे ते पूरा पता है ही नहीं, अजे ते गल इक्का दुक्का पता चलता, इधर ए वारदात हो गई, फलाने दे घर ए होया, फलाने नाल ए होया, फलाने नाल ए होया। तो ये सारी विरासत सानू संभाल के रखनी पेगी, खोज करनी पेगी, और नवे सिरों इस पासे जो है चलना पेगा, मेहनत करनी पेगी। और मैं ये भी अर्ज करा, अगर ये मेहनत की ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का असी सही ढंग नाल प्रचार प्रसार किया, इस देश देच अजे भी बहुत सारे ऐसे ने जो गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ना चाहते ने। मैं महाराष्ट्र इधर छत्तीसगढ़ का इलाका जिहड़ा रायपुर का घूम के आया, छत्तीसगढ़ के इलाके देच कोई गालबन 96 लाख के करीब सतनामी रहिंदे ने, ते उन्हां दे मुखी मेरे को आए, तो उत्थों दे नाल एक दो सिंघां नूं वी नाल लैके आए। वो कहण लगे सी सारे सिंघ सज्जण नूं तैयार आ, 96 लाख के करीब ने इस वक्त, जिहदे च कोई 70-80 के करीब जिहड़े सिंघ सज्जे ने, उहदे च डॉक्टर ने, इंजीनियर ने। ते मैं उन्हां कोल सोधे सिद्ध अपनी तर्क बुद्धि करके पुछ लिया, थोड़े अंदर सिख होने का जिहड़ा जज्बा पैदा होया है, ये तुसी कोई बाणी सुनी है, कोई शब्द गुरु का सुने है, कोई गुरु घर का इतिहास पढ़ के चोट लगी है? कहन लगे नहीं, असी ब्राह्मणा दे सताए हुए सानू शूद्र समझ देना है, सानू अजे गुरु घर का तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गुरु घर दे शूद्र नहीं आख्या जाता किसी नूं, असी सिख बनना। और इसी तरीके नाल महाराष्ट्र दे बन जा रहे ने सिकली गर्न। मैं अर्ज करा अगर 40 साल दे असी सही ढंग नाल प्रचार कर दे, देश की अद्धी आबादी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के खालसे होने सन, इतनी मैं अर्ज कर दें। जिम्मेवारी है हुण उन्हां दे उत्ते जिन्होंने ये प्रचार होने नहीं दिता, किया नहीं, उन्हां दे उत्ते जो गुरुद्वारियां दे मुखी हो के ते खिमा करनी दस्तक खटकांदे रहे पार्लियामेंट दे, गुरुद्वारियां दा ध्यान ही नहीं दिता, ख्याल ही नहीं किया, इस पासे मेहनत ही नहीं की थी, इस पासे समय ही नहीं कढ़िया। इस देश दे अजे भी बहुत सारी धरती पई है, असी इस ढंग दा काम कर सकते हैं, बहुत वड्डे पद्धर ते काम कर सकते हैं। मेरी निगाह च भी यह सतनामी नहीं सन अद की होए, क्योंकि मैं पिंड पिंड गया इधर मध्य भारत के इलाके च, इन्हां 3-4 महीनों दे च उत्साह मेरा बहुत वधिया, ते मैनू हैरानगी भी हुई, ये लोग बेचारे छोटी बोती खेतीबाड़ी का काम करते सन, ते सिर दे उत्ते 2-2 गज के निके निके दस्तारे सजाए हुए, 2-3 सिंह मैनू जिहड़े नाल सन उन्हां कोल मैं सुते सिद्ध पुछया, इन्हां नूं कोल पग्गा नहीं ने, कहण लगे ये पग लैण दी समर्था नहीं रखते, बड़ी मुश्किल नाल अपनी उपजीविका चलांदे ने, पिंडां विच थोड़े ने जिहड़े सनपन ने उह कर लैंदे। ते फिर मेरे मन च ख्याल पैदा होया कि लंबे तौर तरीके नाल सिलसिला चलाना पैगा, 5 ककार लखां दी तादाद च दस्तारां चाहीदियां ने, सिंघ सज्जण नूं तैयार, गुरुद्वारे उत्थे कोई बणाए, हुण हर थां ते गुरुद्वारे ते सोना लाना, संगमरमर लाना मैनूं तां नहीं चंगा लगदा, भावें तुसीं औखे होवो उह गल वखरी है, हुण उहनां पिंडां छोटे छोटे गुरुद्वारे बनाओ, हुण जीवदे जागदे सिक्खी दे मंदर खड़े करो, ताकि किसे दोखी दी हिम्मत ना पै सके मुल्के साडे सीनियां नूं जो है गोलियां नाल छलनी करे, इस ढंग दा कोई काम करिए। इस ढंग दा उद्दम उपराला करिए, ते यही कुछ मैं उधर कलकत्ते सम्मेलन च थां थां ते कहिंदा आया, कहिंदा तां मैं बहुत पुराने समय तो सी, लेकिन बनजारियां दे बारे जो कुछ मैं आख्या

प्रथम सिनेमर गुरुदेव जी फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने आज दा सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत दी समस्या है। मनुख दा कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख दा कुछ लोभ दा जगत है। ये जीवन दे ढंग दोई ने, लोड़ां दे च जीवना, लोभ दे च जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां दी पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ दी पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा स्वभाव है ते पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहंदा है, अधूरा ही रहंदा है। जगत दे च पूरन शांतमई जीवन ओही जीवदे ने जो लोड़ां दे च जीवे, लोभ दे च नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना, तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना, मंगता, तीजा साधन खोना, लुटना। लोड़ां नू पूरे करन दे ए तीन साधन है। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नू कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नू कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नू कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार विच ए तिन्ने मौजूद ने। ए ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं है। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोख है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राही व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्हां नूं बकायदा नाम दिते ने,

सनातन मत हिंदू धर्म की शाखा एक नहीं है, ये ऐसा दरिया है जो कई धाराओं में बगदा है। जैसे मैं देखे अमरकंटक दे बिलासपुर मध्य भारत हूं तो फिर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंट, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, तो जब निकलती है उत्थे इस दिया 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने छोटे छोटे, अगो जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शक्ल अगे चल के बनती है, छोटिया छोटिया धारां। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, ये बहुत सारिया धारावां विच बगदा है और अगे जाके कट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इन्हां विच और सन्यासियों के कई कई रूप, बैरागियों के कई कई रूप, ब्रह्मचारियों दियां कई कई शाखां, फिर जितने इष्ट ने उतनिया धारावां ने, किसी का इष्ट शिव, किसी का श्री राम, किसी दे श्री कृष्ण, ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड़ो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत लेखक विद्वान महात्मा तुलसी जैसे मथुरा देश आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नूं असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी की नगरी है, अयोध्या राम की नगरी है, बनास शिवा की नगरी है, मथुरा कृष्ण की नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हों कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारका देश मंदिर विच, सारियां ने डंडौत कीती, तुलसी ने नहीं कीती, तुलसी ने नहीं कीती। पूछिया गया आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं भगती दा संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं तुसी बहुत वड्डे विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की, मत्था नहीं टेकया, तो हुण जो कुछ तुलसी कहिंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं तुहाडे सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छबि है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है, ऊंटा नाल मुरली लाई हुई है, सिर ते मुकुट है, बड़ी सुंदर पोशाक है, बड़े कीमती गहने ने, कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तौने में जो धनशबान होए हाथ। तुलसी दा सिर ते तां झुक सकदा है जे हाथ दे च धनश दान हो, धनशबान होवे। मैं धनशधारी दा पुजारी हां, मुरली धर दा पुजारी नहीं, इहदे हाथ ते मुरली है। मैं अर्ज करां मुहम्मद साहब ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता उन्हां सारयां दा इक्को ही नाम है मुसलमान। मुसलमान महात्मा बुद्ध ने जिस उम्मत नूं जन्म दिता उन्हां सारयां नूं कहिंदे

0: ভিক্ষু, ভিক্ষু
1: ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ। ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਘਰ, ਛੇ ਗੁਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ, ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੇ ਨੇ। ਨਿਆਇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੜਾਦ, ਇਹ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਘਰ, ਛੇ ਗੁਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ? ਦਰਅਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਲੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਟੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ, ਕਪਲ, ਕਣਾਦ, ਪਤੰਜਲੀ, ਜੈਮਿਨੀ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ। ਇੱਥੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ। जिस घर विच कीर्ति चल रही है, जिस घर विच सत्संग चल रहा है, हे करते तेरी गल चल रही है, तेरिया बातां चल रही हैं, तेरा ज्ञान चल रहा है, तेरी ध्यान साधना चल रही है, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तो है। उस घर विच मैनू रख, मैनू ओ थां बख्श जिथे तेरी कीर्ति हो रही है, जिथे तेरा जस हो रहा है, जिथे तेरी महिमा हो रही है, ताकि मैं सुना सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नेता। तो मैं अर्ज कर रहा सी, इको ही उम्मत नो जन्म देता है गुरु नानक ने, सिख सिख केवल सिख है, इको ही उम्मत नो जन्म देता है। मुहम्मद साहब ने मुसलमान केवल मुसलमान, इको ही उम्मत नो जन्म देता है महात्मा बुद्ध ने, भिक्षु भिक्षु एक तरह की उम्मत सनातन मत विच नहीं है। कोई आर्या समाजी ने, कोई देव समाजी ने, कोई जो है सनातनी ने, फिर इन्हां दी शाख साधुआं दी अलग अलग शाखावां ने। अगर असल देखना होवे तो जद इन्हां दी शाइयां निकलदियां ने कुंभ दे उदों पता चलता है कितने फिरके ने, अलग अलग टोल लड़ भी पैंदे, झगड़ा भी हो जाता। इस कुंभ तो पहले कुंभ दे 42 साधु मारे गए सन, नांगे साधुआ की निरंजनी अखाड़े की जंग हो गई सी, लड़ पे। एक ने कहा पहले असी स्नान करना, दूजे ने कहा पहले असी करना, कुंभ लड़ पे। हैरानगी की गल, कुंभ दे दिन पाप धोण वास्ते आए सन, उत्थे ही पाप कर बैठे, 42 बंदे कतल हो गए। जन्मां जन्मांतरां दे पाप धोण आए सन, सब तो वड्डे पाप उत्थे ही कीते, सब तो वड्डे गुनाह उत्थे ही कीते। एक शाखा नहीं है, अनंत धारावां ने, ये ओ दरिया है जो अनंत धारावां विच पहाड़ तो निकलदा फिर मिलदियां भी नहीं आपस, अलग अलग ही चलदियां। तो मैं अर्ज कर रहा सी, मनुख दियां लोड़ां ने और लोड़ां दे नाल संबंध मनुख तोड़ नहीं सकता। लख यतन करे, मैनू नहीं चाहिदा पानी, पर शरीर मंगेगा, लोड़ है। लख मैं उच्ची आवाज नाल आखां, मैनू नहीं चाहिदा भोजन, पर शरीर नू भुख लगेगी, मंगेगा। शरीर नू गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भुख लगती है, प्यास लगती है। कुछ ते वड़ियां वड़ियां शरीर दियां लोड़ां ने, कुछ छोटियां छोटियां होर बथेरियां। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुंना, लोड़ां दा कोई त्यागी नहीं है, कोई त्यागी नहीं। गल मैनू भुलदी नहीं, 15 दिन मैं कस्तूरबा ग्राम इंदौर विच संत विनोबा भावे दे होंदिया कथा कीती सी। सवेरे मैं इमली साहब गुरुद्वारे च करदा सी, शामी कस्तूरबा ग्राम जो संत विनोबा भावे जी का आश्रम सी, मैनू कहन लगे सानू भी गुरबाणी सुनाओ, मैं जरूर सुनावांगा। मैनू उन्होंने 35-40 किताबा भी अपनिया लिखिया हुई भेटा च दित्तियां। सुभाविक बजुर्ग सन, धन माया मेरे अगों आई, तो चूंकि त्यागी साधुआ का आश्रम सी, परोपकारियों का सेवा भाव, जमीन कट्ठी करके ते गरीबां दे च वंडनी, भूदान, तो ओ माया मैं विनोबा भावे दे झोले च पा दित्ते। एकदम सुट दिती मिट्टी। मैं क्या इस तरह क्यों एने नफर मिट्टी है ये। मैं क्या मिट्टी नू हाथ लांदे हो कि नहीं? मिट्टी नाल ते तुहानू हाथ भी धोने पैंदे मैं देखदा। मिट्टी नू हाथ लांदे हो कि नहीं? ते जे धन भी मिट्टी है तो की हर्ज है? की हर्ज है? मैनू कहण लगे मनुखता ने मिट्टी नू अजे इतनी अहमियत नहीं दिती, मिट्टी तो बने हुए कागज नू इस करंसी नू बड़ी अहमियत दे दिती। इहदे विच अहमियत छुपी हुई है बड़ी, इह किधरे लोभ ना पैदा कर देवे इस वास्ते सुटदे। मैनू अजे तक याद पर लोड़ां दा मनुख त्याग नहीं कर सकता। लोड़ां हैं, मैं लख कह दिया नहीं चाहिदा मैनू पानी, मेरी प्यास आवाज मारेगी पानी चाहिदा चाहिदा। मैं लख ठोकर मार देवां भोजन दे थाल नू, मेरी भुख उच्ची आवाज नाल मंगेगी भोजन चाहिदा भोजन चाहिदा। और इस तरीके दियां होर सैकड़े लोड़ां। फिर लोड़ां नू पूरा करन दे तीन साधन ने। पहला किरत करनी, मेहनत करनी। मेहनत करके अपनी लोड़ां दी पूर्ति करनी, ते जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदा उनू कहिंदे ने किरत। दूसरा मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी। क्योंकि अज दा वाक इस तरह दा आया तो मैं अर्ज करा अछूता जिहा वाक है, किस हो जाची किस साला जाचण मंगण तो गल चलती। अज दा हुक्मनामा इस तरह दा, इसने ही ख्याल दिते ने मैनू, अज दा वाक ही ऐसा आया। लोड़ां दी पूर्ति करन दा पहला ढंग है किरत करनी, मेहनत करनी। उन्हां नूं कहा जांदा है किरती। दूजा ढंग बड़ा व्यापक पद्धर ते सारी दुनिया दे चे मंग के लोड़ां दी पूर्ति करने। तो इस नाल मंगतियां दा जन्म होया, भिखारियां दा जन्म होया। और धार्मिक जगत दे च भी मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी है तो महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत नूं कहा भिक्षु भिक्षु भिक्षा मंग के गुजारा करना। इस वास्ते मैं कई दफा कहा कि महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर दा धर्म ते इस तरह दे होर त्यागियां दा धर्म व्यक्तिगत धर्म है, है प्रभु नाल जुड़न दा वसीला है। ये व्यक्तिगत धर्म है, समूहक नहीं, सारियां दा नहीं। कारण अगर सारे भिक्षु बन जान, चलो मन लेंदे हां सारे महात्मा बुद्ध दी गल मन लैन ते सारे भिक्षु बन जान, फिर कौन देगा? देण वाला कौन होगा? किसने देना? सारे ते मंगते हैं, सारे ते मंगण वाले, फिर कौन देगा? तो सारियां दा धर्म नहीं है। अगर सारे ग्रस्त दे त्यागी बन जान तो 300 साल तो बाद बंदा ते जमीन ते एक भी नहीं लभेगा, गल खत्म हो जाएगा, मनुखता तो खाली हो जाएगी जमीन। अगर सारे ग्रस्त का त्याग कर दें, महात्मा बुद्ध का धर्म अजीम ने, महान ने, बड़े विचारक ने, उन्हां दा धर्म व्यक्तिगत धर्म है, समूहक धर्म नहीं है, सारियां दा धर्म नहीं है। स्वामी महावीर का व्यक्तिगत धर्म है, समूहक धर्म नहीं है। सारे ग्रस्त का त्याग कर देन, थोड़े दिनों तो बाद ही जमीन मनुखां तो खाली हो जाएगी, शेरां तो खाली नहीं होवेगी, क्योंकि शेर ते त्याग नहीं करनगे, वो प्रकृति के नियम नाल जीणगे। गवां तो खाली नहीं होवेगी, कुत्तियां तो खाली नहीं होवेगी, सप्पां तो खाली नहीं होवेगी, पंछियां तो खाली नहीं होवेगी। ये जमीन मनुखां तो खाली हो जाएगी, क्यों खाली हो जाएगी? त्यागी खाली कर देणगे। ग्रस्त का त्याग व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत समूहक नहीं है। भिक्षा मंग के उपजीविका चलानी व्यक्तिगत धर्म है, धर्म है। बहुता समा मेहनत विच जाया हुंदा है भजन करिए। मैं तो एक ऐसा भी देखे, क्योंकि अमृत वेले थाईलैंड विच 5 बजे भिक्षु निकलते ने भिक्षा मंगन, उस टाइम निकलते हैं। सूरज निकलता है उस तो पहले पहले मंदिरों च वापस चले जाते हैं, अपने आश्रमों विच वापस चले जाते हैं। लोकी अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, हर दूजे तीजे घर विच देण वाले खड़े होते हैं, देंदे हैं। उत्थे ही मैं सोचिया सी, आखिर मंगण दे च भी तो मेहनत तो होंदी है। उठे हाँ, खप्पर लिया, बुए बुए ते जा रहे हैं, मेहनत ते है, मेहनत ते है। लोड़ां दी पूर्ति 3 तरीकों नाल होंदी है। मेहनत करके, जो मेहनत करके पूर्ति करदे ने किरते, जो मंग के पूर्ति करदे ने भिक्षु भिखारी मंगते, और जो खो के पूर्ति करदे ने, लुट के पूर्ति कर दे चोर लुटेरे डकैत। ये 3 साधन ने लोड़ां दी पूर्ति करनी है, या तो खो के करनी है, लुट के करनी है, डाका मार के करनी है। लोड़ां ने कितों पूरी करिए, खो के करांगे, लुट के करांगे, डाका डाल के करांगे, मंग के करांगे नहीं, मेहनत करके करांगे। मेहनत, धन गुरु नानक ने जो तरीका सानू दिता है, खा गाल खाए किछ हथों दे नानक रा पछाने से। उदम करेंदिया जीव तो कमाऊंदिया सुख वंच, ध्याम दया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिन। दूजा टोला भिक्षुआ का बहुत वड्डा है। गोरख ने जो इच्छो पैदा किए जोगी भिक्षा मंग के गुजारा कर, भिक्षु भिक्षा मंग के गुजारा कर दें, जैनी साधु भिक्षा मंग के गुजारा कर दें, सूफी फकीर भिक्षा मंग के गुजारा कर दें। की खोट, करना थोड़ा है, मंगना बहुत ज्यादा, उदे बदले चाहिदा बहुत ज्यादा है। सेवा थोरी मांगना बहुत। 10% दुकान विच वस्तु विच नफा नहीं रखना, 20% भी नहीं, 100% लुटना है, अगले दे कपड़े लाने। जिस तरह किरत धर्म दी भी हो सकती है, कि किरत नूं भी बेईमानी ते खड़ा किया जा सकता है, इस तरह भिक्षु मंगतियां दी दुनिया दे च भी अलग अलग मंगते ने। एक ते ओह जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं परमात्मा दे लेखे लाया, शरीर दी लोड़ां लई मंगदे ने। एक ओ गली गली विच मंगते ने, बाजार दे चौक विच। ये अपनी जिंदगी नूं परमात्मा दे दाव ते नहीं लाया, बस जिंदगी नूं ही मंगण ते लाया, और कोई काम ही नहीं। मंगना मंगना मंगना ही जीवन का लक्ष्य है, और कुछ नहीं। भिक्षु जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, साधन है भिक्षा मंगना। भिक्षा मंगना ही लक्ष्य है, भिक्षा मंगण ली जिंदगी है। भिखारी मंगते गदागर इन्नी भी श्रेणी ने, फिर लुटेरा तबका चोर तबका डकैत तबका है ही नहीं, वही तबके वो तो है ही नहीं वहां तबका। लोड़ां दी पूर्ति ये 3 ढंग नाल होंदी है, 3 ढंग नाल। गुरु नानक ने सानू किरती बनाया, किरत कर, उदम करें दिया जीव तो। फिर ऐसा भी कहते ने, मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल ना जा। मांगत मान ना पाया, ना मन भिखारी ना बन, भिक्षु ना बन। इस तरह की उम्मत नू मैं नहीं जन्म देना। किरत कर, मेहनत कर, दिमागी मेहनत कर, शरीरक मेहनत कर, कुछ भी कर। हैरानगी दी गल, सारी जिंदगी गुरु नानक ने भरमण दे च लंघाई, उपदेश ते संदेश दे च लंघाई, बिरधावस्था दे च आखरी समय करतारपुर दे च हल पे चलांदे ने, बीज पे बीजदे ने, खेती पे करदे ने। जगत दिता, जगत नूं दस दिता, मैं किरत नहीं छोड़ी, मैं कम नहीं छोड़े, मैं धंधा नहीं छोड़े, ये तो मैं करने। आखिरी दम तक कबीर कपड़ा बुन दे रहे, बुन दे रहे। जब चेलिया ने ही कह दिता कबीर नो हुण ते छड़ो, थोड़ी प्रसिद्धि बड़ी हो गई है, चारों पासे लोकी थानू भगत भगत करके पूजदे ने, सन्मान देंदे ने, हुण ते छड़ो। कहण लगे नहीं, हुण ते मेरी किरत भी कीर्ति बन गई है। हुण जद मैं खड्डी चलाना ते खड्डी दी धुन पैदा होंदी है मेरे मन दे चों, प्रभु दी धुन पैदा होंदी। हुण कपड़े बुनना सेवा बन गया, मनुखता दी सेवा बन गया, हुण क्यों छोड़ा। पहले मैं सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति वास्ते कपड़ा बुनदा सी, हुण ते कपड़ा बुनना सेवा बन गया, हुण क्यों छोड़ा। आखिरी समय तक कपड़ा बुन दे रहे, नामदेव कपड़िया नूं छिम दे रहे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख लोड़ां दा त्यागी नहीं हो सकता, लेकिन मनुख लोड़ां दे च नहीं जीवदा, लोभ दे च जीवदा, लोभ दे च। ते लोभ मनुख दे मानसिक सथल नूं इतना गिरा देंदी है, प्रभु नाल जुड़ना, प्रभु चिंतन करना, सत्संग दे च बैठना औखा हो जाएगा, कथा कीर्तन सुननी औखी हो जाएगा। ये लोभ नहीं करन देगा। महाराज कहंदे ने लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नूं, ज्यों कूकर हर काया लोभ तावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जाने पख अवख सब खाए। लोभ ते पागल कुत्ता बना देंदा है मनुख नूं, किसे नूं भी नहीं छड्डेगा। पागल कुत्ता जिन्हें पाले है उन्हों भी वड्डेगा, उन्हों भी खाएगा। इस वास्ते तमाम संत जना ने, अवतारियां ने लोभ दे त्याग दिए। लोड़ा दी सीमा है, लोभ दी कोई सीमा नहीं। लोड़ दी ते सीमा है। इहदे उत्ते इक मैं उदाहरण देना, उन्हां दे के फिर अकरी अर्थ करिए। जैसे भुख दी ते सीमा है, दो रोटियां मैं नहीं खावांगा तो चार खा लेंगा, चलो चार नहीं तो अठ खा लवांगा, सीमा तो है ना। भुख दी सीमा है, स्वाद दी सीमा नहीं है। हुण बंदा सारा दिन खांदा रहेगा, घंटे घंटे च खांदा रहेगा, और अद्धे घंटे च खांदा रहेगा, स्वाद दी सीमा नहीं है। भुख दी सीमा है, लोड़ां दी सीमा है, लोभ दी सीमा नहीं है। लोड़ां मनुख नूं नहीं गिरांदियां, लोभ गिरा देंदा है। लोड़ां मनुख नूं नहीं भटकांदियां, लोभ भटका देंदा है। लोभ पागल कुत्ता बना के रख देंदा है। इस लोभ दी पूर्ति भी मनुख तीन तरीकियां नाल करदा है, मेहनत करके, मंग के, या लुट के, खो के। लेकिन लोभ दी पूर्ति होंदी नहीं, किरत नाल नहीं होवेगी। किरत नाल लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, मंग के भी नहीं होवेगी, खो के भी नहीं होवेगी। इहदे च मनुख राजी नहीं सकदा, तृप्त नहीं हो सकदा। जिस नुकते नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इत्थे लिया है, वो यह है, तू मनुख है, बाकी भी मनुख ने, ते मनुख हो के मनुख कोल मंगदा, ये तो बहुत हीणी गल है, बहुत हीणी गल। मनुख है, मनुख कोल मंगदा, सारी मनुखता कृत है, करते कोल मंग जे मंगना ही है, करते कोल मंग, कृत कोल क्यों मंग, तू भी करते दी कृत है, बाकी भी पर करते दी कृत है। उस करते ने वक वक बांडे बनाए ने, बनाए उसे कोई करते ने, किसी ने किसी नु कुछ बनाया, किसी नु कुछ बनाया, किसी नु कुछ बनाया, सारे कृत ने, तू भी कृत है, बाकी भी कृत ने, ते कृत कृत तो मंगे। तो कविता जो है, कवि भी कृत है कविता, कई छंद ने, ते एक छंद अपने नु महान बनाना चाहे, सुधाई कराना चाहे, ते दूजे छंद नु बेनती करे, दूजी काव्य शैली नु बेनती करे, भी ए छंद जरा तू मैनू ठीक कर दे। छंद छंद नु किस तरह ठीक कर सकता है, उम्मीद गल पकड़ दे चाहिए। शेर शेर नु किस तरह ठीक कर सकता है, उर्दू शेर कहते हैं। सवैया सवैये नु किस तरह ठीक कर सकता है, कवि ठीक कर सकता है, कवि करता है वो ठीक कर सकता है। कृत कृत कोल मंगे, कि कृत कृत कोल सफल होना चाहे ते महान होना चाहे, कृत किसे नु महान नहीं बना सकती, करता ही महान बनाता है। इस शब्द दे कुछ इस तरह दे ख्याल आए ने, जो मैं भूमिका दे रूपे थोड़े सामने रखे ने। हुण अखरी अर्थ सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतना श्री वाहेगुरु।
2: सोरठ महला पंजवा, कार पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: राग सोरठ है ते एक ताल दे चे, थोड़ा जहा मैनू संगीत दा बोध है, यका एक ताल, तीन ताल, चौताल, ये मात्रा आउंदियां ने, ताल आउंदे ने, किस ताल दे च गायन करना। गजब दी गल, इतनी सख्ती सतगुर ने उपर रखी है, ये राग ते फिर इस ताल दे च गाना है। ये नहीं कोई कोई दफा लिख दिता है सोरठ, हुण सोर राग दे जितने शब्द आणगे सब ते सोरठ लिखी जाण, बार बार लिखी जाण, बार बार लिखे जाते हैं, मता किसी होर राग च गाओ, इस च गाओ, बार बार लिखे जाते, बार बार लिखे। धनासरी के शब्द आन गए, बार बार धनासरी च लिखे, धनासरी मल्ला पंजवा, धनासरी मल्ला पंजवा, महाराज एक दफा उपर लिख दिता, ठीक है धनासरी गल खत्म। बार बार क्यों लिखे जाते, इस वास्ते किधर कोई शब्द धनासरी च गाउन ते बाकी ना गाने, सारे बनासरी च गाने, ये सारे ही सोरठ दे च गाने। कौन गांदा है सोरठ ते कौन गांदा है धनासरी, दो सुरां दा राग रह गया, स्रोत बड़ी नीवी हो गई है, उच्चारण ते गायन बड़ा नीवा हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। कौन गुरबाणी दी विचार सुनदा है, मैं अर्ज करा फोके किसे कहानियां जो ना इतिहास ने, ना मिथिहास ने, ना सच ने, क्यों स्रोत नीवी हो गई। अर्थशास्त्र का यह नियम है, जिहड़ी चीज मनुखां दी लोड़ आउंदी है मार्केट च उही आ जांदी है, ते जिस चीज की खरीदारी बहुत ज्यादा होवे बस वो मार्केट बहुत आ जांदी है। हुण जावे बंदा जौरी बाजार दे च ते आखे मूलियां चाहीदियां ने, गाजरां चाहीदियां ने, तो जौहरी बाजार दे भी मूलियां गाजर वाले बैठ जाएंगे। मैं देखे जौहरी बाजार जयपुर का, हीरे मोतियां दी दुकाना दे अगों गाजर मूलियां बेचण वाले बैठे ने, उत्थे मैनू ख्याल मिले हद हो गई बाजार, जौहरी बाजार बड़ा सुंदर बाजार, अदकी साड़ी रिहायश भी उत्थे सी, हर साल तीन दिन का बहुत वड्डा समागम हुंदा उत्थों करके आया जयपुर आगरे तो। जौहरी बाजार सिंह साहब भी गए सन उत्थे, यानी हरचरण सिंह जी, जौहरी बाजार विच मूलियां पईयां विकन, गाजरां पए, बैंगन पए विकन, मैं कहा दो गई इत्थे जौहरी बाजार है, सारियां दुकानां हीरे जवाहरात दियां, अगे फुटपाथ ते मूलियां पईयां बिकदियां ने, हीरे जवरात दी दुकान है ते कोई एक एक बंदा किसे च एक भी नहीं सी। वो भीड़ सी गाजर मूलियां थे उत्थे ही भीड़ सी, पालक ते साग ते भीड़ सी, बैंगणा ते भीड़ सी। स्रोत नीवी हो जाए वक्तव नीवा हो जाता है, स्रोत नीवी हो जाए गायन नीवा हो जाता है। इस समय सिख समाज की स्रोत गुस्ताखी माफ मैनू कह देना बहुत नीवी होगी। दो सुरां दा राग रह गए, गुरमत संगीत खो गए खो गए। बड़ी सख्ती दे नाल हर शब्द ते सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा, सोरठ मल्ला पंजवा। मता एक शब्द सोरठ च गाओ बाकी ना गाओ, सारे गाने ने सब नू सोरठ दे च गाने। श्री राग मल्ला पहला, श्री राग मल्ला पहला, श्री राग मल्ला पहला। मता किधरे एक शब्द नू तुसी श्री राग च गाओ, सारिया नू गाना बार बार लिखे। फिर सिर्फ इतना ही नहीं लिखिया, राग ताल भी लिख दिता है। यह तीन ताल च गाना है, एक ताल च गाना है, इतने मात्रा का राग है, यह भी लिख दिता है। कौन परवाह करता है, कौन ध्यान दे, कौन इस पासे जावे। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, राग सोरठ है। एक ताल दे सतगुरां ने इसकी बंदिश बनाई है। ओहंकार ब्रह्मंड की ध्वनि है और एको यही ध्वनि है, वो सत स्वरूप है। उसे तो सारा ज्ञान आउंदा है, गुरु है, और उदा स्वभाव है करुणा दया प्रसाद। एको ओहंकार सतगुर प्रसाद सरवण करोणक।
2: किस हों जाची किस आराधी जहां सबको कीता हो सी।
1: ए प्रभु मैं किस कोल मंगा, किस दे अगों हाथ फैलावा। सारी ते कृत है, तेरी बनाई हुई कृत है, कृत कोल मैं क्यों मंगा, क्यों मंगा, ते सारी कृत है। कलगीधर पातशाह कहंदे ने केवल काल ही करता, बिन करतार न किरतम मानो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बिन करतार न किरतम मानो, कृत नु कृत करके जानो, करता करके नहीं, करतार नु करता जानो। जिन्हें करता बनाया है उस नाल जुड़ो। करीबन करीबन कृत दे पुजारी और बदकिस्मती अपनी कृत दे पुजारी। अपने हथां नाल कबर बनाइए चदरां पे चढ़ा देन मथा पे टेक दे, अपने हाथ नाल तस्वीर बनाई है मथा टेकी जा रहे, पूजी जा रहे। अपनी कृत, परमात्मा की कृत भी नहीं, अपनी कृत नू पूजी जा रहे। महाराज इत्थे कहंदे ने प्रभु सब कुछ तेरा बनाया है, सब कुछ तेरी कृत है, ते मैं कृत कोल क्यों मंगा। किस हो जाची किस साल आई केदी मैं उपमा करा, केदे अगो मंगा। जा सबको कीता हो सी, जा सब कुछ तेरा कीता होया, तेरी कृता है। हां जी,
2: जो जो दिसा वड्डा वडेरा सो सोखा कोरल सी।
1: भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है, धन बहुत ज्यादा है, भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है, गुण बहुत ज्यादा है, भावें बहुत वड्डा दिखाई दे रहा है, कला बहुत ज्यादा है, कलाकार है, सब कृत है। सारी कला तैथों आउंदी है, तू सर्व कला का गया था, सारी कला तैथों आउंदी है, सारा रंग तैथों आंदा है, सारा रूप तैथों आंदा है, सारा धन तैथों आंदा है, सारे पदार्थ तैथों आंदे ने, सब तेरी कृत है। ये जो वड़े वड़े मनुख दिखाई दे रहे ने, मैं इन्हां कोल भी नहीं मंगदा, इन्हां ने भी एक दिन खाक हो जाना, मैं भी खाक हो जाना, क्यों मंगा। जो जो दीसे वड़ा वडेरा सो सो खाको रुल्स। ये भी एक दिन खाक दे खाक होंगे, मिट्टी च मिट्टी होंगे।
2: निर्भव निरंकार भव खंडन साफ सुख नाम निध देसी।
1: वो जो आकार तो रहत है ते करता है, जिस दे च भय नहीं है, उही सारियां सिद्धियां दा दाता है, उही सारे खजानां दा दाता है। इस वास्ते सुखमनी साहब दे ते ऐलानिया गुरु अर्जन देव जी ने कह दिता, मौनक की टेक बिरथी सबजा। जिंदगी नू व्यर्थ करना है तो टेक मनुख नू बना ले। टेक गुरु ते बनदी नहीं, प्रभु ते बनदी नहीं। उहदे अगों तो लोकी प्रार्थना करदे ने, कोई किसे डेरे धक्के खा रहा है, कोई किसे धक्के खा रहा है, कोई किधर है, कोई किसे कोल फरियाद पिया करदा है, कोई किसे कोल फरियाद पिया करदा है। खाली पता नहीं कितने आए मैनू कहण लगे, ज्ञानी जी साडा ऐ दुखदा है, साडा ऐ दुखदा है, साडा ऐ दुखदा है। ते मैं कह जरा हुण सुन लो मेरी भी गल, मेरे गोडे दुखदे ने, मैनू भी तकलीफ है, ते मैनू कुछ दसो तुसीं। हद हो गई, परमात्मा दे अगों फरियाद करना आउंदा ही नहीं, उहदे अगों जोदड़ी करना आउंदा ही नहीं। कारण भरोसा ही कोई नहीं, भरोसा ही कोई नहीं। सारे खजानिया का मालिक ओ है, नौ दिन लान देन वाला ओ है, सारी कला का दाता ओ है, सारे ज्ञान का दाता ओ है, सारे फलां नूं देन वाला ओ परिपूर्ण परमात्मा है, जो आकार तो रहत है, भय तो रहत है, वैर तो रहत है। हां जी,
2: हर जीव तेरी दाती राजा।
1: हे हरि, तू देवे ते मैं रज सकदा, मनुख दे दिते हां मैं नहीं रज। कारण मनुख दे देण दी सीमा हुंदी है, चाहे वह मनुख पिता है, वह देवी देण दी सीमा है। एक दिन हथ पिछे कर लेगा, पुत्र हुण मैं नहीं दे सकदा। राह दे देण दी भी सीमा, यह भी मैं अर्ज करते हैं। मित्र दे देण दी भी सीमा, कितना क देगा, कदों तक देगा, सीमा। पर परमात्मा दे देण दी सीमा नहीं है। देंदा दे लेंदे थक पाए, वो देंदिया देंदिया नहीं थकदा, लेंदे लेंदे जगत थक जाता है। जो देंदिया थकदा ही नहीं, उहदे अगों हथ नहीं परसारदे। जिहड़े हाथी संकोच लेंदे ने, बंद कर लेंदे ने, जेब विच पा लेंदे ने, उहनां दे अगों हथ पै लैंदे, उहनां दे अगों जोदड़ी करदे आ। महाराज कहिंदे ने, हे प्रभु तूं देवें ते मैं रज सकदा, मनुख दे दित्ते आ मैं नहीं रज सकदा। यह मेरी तृप्ति नहीं होवेगी। प्रभु जी तेरी दाती राजा, रज सकदा मैं, तू मेरी चौली च पावे, तू ही रजा सकदा है, मैनू कोई मनुख नहीं रह जा सकदा।
2: मानस बपड़ा क्या साला ही, क्या किसका मोह ताजा।
1: क्यों मैं मनुख दी सिफतो सलाह करा, क्यों मैं उसनु दाता आखा, क्यों मैं उसकी मुताजी करा। मनुख दे देते हैं, आज तक ना कोई रजे है ते ना रज सकदा है। इस वास्ते साहब कहंदे ने, हे प्रभु तू ही सब नु रजाना है, तू ही रजा सकदा है, मनुख मनुख नु नहीं रजा सकदा। हां जी,
2: रहा जिन हर ध्याया, सब किस किसका, किसकी भूख गवाई।
1: जिसने अपना ध्यान हरि दे जो है जोड़ा, उसनु सब कुछ दी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा उसदियां सारियां भुखां मिटा देंदा है, ध्यान जोड़न करके। सच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाईयां। जिंदगी लोड़ां ते सीमित हो जाती है, लोड़ पूरी हो गई भुख मिट जाती है, पर यकीन जानो लोभी मरदे दम तक भुखा रहिंदा है, भिखारी रहिंदा है। ये जीवदा है भिखारी दी तरह, मरदा भी भिखारी दी तरह, क्योंकि लोभ ते त्रिपत होंदा ही नहीं। ध्यान जोड़दिया प्रभु दे नाम दे मिलदिया लोभ शांत हो जाता है, जिंदगी लोड़ां ते सीमित हो जाती है। ऐसा मनुख आनंद माणदा है, सुख माणदा है। हां जी,
2: ऐसा थानु दिया सुखदाता, निखुट ना कभी जाए।
1: ऐसा नाम दा धन उसने चौली दे च पाया है, जितना जपिए जितना वंडिए खत्म होंदा ही नहीं, खुटदा ही नहीं, खुटदा ही नहीं। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। कोल धन है ते चार पुत्रां दे च वंडना है, कट जाएगा। सारी दुनिया दे च नाम जपदा रहे ते जपांदा रहे, जपदिया जपदिया वधेगा ते सही घटेगा नहीं, जपांदिया वधेगा ते सही घटेगा नहीं। एक ऐसी दौलत है जो हमेशा वधदी है, वधदी है। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल इसे नू दौलत कहंदे ने। दौलत जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी दौलते सरमाया इमां बवद हर गदा अजरा याद ओ सुल्तान बवद मनुख कोल मंगदा है सारी जिंदगी मंगदा रहेगा पर नंद लाल कहने जेड़े रब कोल मंगदे ने बादशाह हो जाते बादशाह हो जाते मंगतापना खत्म हो जाता है जिसनू बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह दौलत सरमाया इमां बवद हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद फिर कहने गर बजुर्गी बाए दत कुन बंदगी वरना आखर में कशी शर्मंदगी तू बजुर्ग होना चाहना है रजना चाहना है महान होना चाहना है बंदगी कर त्रिपत हो जाएगा नहीं तो सारी जिंदगी मंगता ही रहेगा भिखारी रहेगा जीवन भर मंगता रहेगा अंदर ख्वाहिशा चल दिया रहनगिया तेन चैन जो है नहीं लैन देनगिया कहते ने भाई साहब भाई नंद लाल दे शरीक जद आनंदपुर साहब पहुंचे ना उन्होंने दुख बड़ा होया मुल्तान तो आए सन नंद लाल पांडे पै मांजते सन लंगर दे ते शायद आपनू पता होवे नंद लाल बहादुर शाह दे अतालीक सन औरंगजेब दे लड़के दे जो लड़के सन औरंगजेब दे पोतरिया नू पढ़ांदे सन अतालीक सन शहनशाहां दे बच्चे नवाबां दे बच्चे जागीरदारां दे बच्चे उह पढ़दे सन उस वक्त दे बहुत वड्डे अतालीक सन फारसी उर्दू विच अतालीक कहिंदे ने पढ़ाण वाले ने ट्विटर नू अतालीक सन एक दिन किधरे कुरान दी आयतां दे इस ढंग नाल अर्थ कीते अजय शहनशाहियत औरंगजेब दी चल रही सी पोतरे भी उस दे सन ते बहादुर शाह नू अजय गद्दी नहीं मिली सी ए ते बाद च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मदद नाल मिले जद कन्ना विच ओ अर्थ पै गए ते औरंगजेब ने मुराद नू कह दिता ऐसा रोशन जमीर बंदा ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए बस इन्नी गल कह इशारा कर दिता अद्धी रात दे वक्त मुराद आया नंद लाल दे कोल सुते भाई साहब नू जगाया आख्या मेरा घोड़ा ले लो नस जाओ बच जाओ निकल जाओ क्यों थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है थोड़ी रोशन जमीर खतरे दे च है थोड़ा ईमान खतरे दे च है तुसी मेरे मित्र हो मैं मित्रता निभाण दे नाते आया ते मेरा घोड़ा लो इस ते बैठो ते दौड़ जाओ भज जाओ नंद लाल कहिंदे ने मित्रा किथे भज जावां सारे भारत दे ते राज इस दा ही है जिथे जावांगा पकड़ा जावांगा किथे भज जावां सारी जगह ते इसे दा हुक्म चलदा है मुराद ने कहा एक थां ऐसी है जिथे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा धन गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है ओ केड़ी थां है ओ केड़ी जगह है ओ आनंदपुर साहब है उथे बज जा रात नू सफर करदे सन दिन नू किधरे छुप जांदे सन मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे सतगुरु दे दरबार विच हाजरी भरी मत्था टेकिया ते कहन लगे महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है इत्थे ही रहना है हुण मेरा दर घर यही है मेरा सहारा तुसी हो इत्थे ही रहना है हां महाराज मैं इत्थे रहना खुशी नाल रहो तीन चार दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नू कहन लगे महाराज जद मैं इत्थे रहना है ते आपने रख लिया ते कोई सेवा बख्श दो मैनू ते सतगुरु कहन लगे की कर सकदा है तू तैनू की आउंदा पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हाँ, मैं रोशन जमीर हाँ, मेरी कलम चो नगमे निकल देने, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकल देने, फिलसफा निकलदा है, ज्ञान निकलदा है, विचार निकलदे ने। मैं चिंतक हाँ, मैं अजीम शायर हाँ, मैं कलम दा धनी हाँ, दिमाग दा धनी हाँ, जबान दा धनी हाँ, रोशन जमीर हाँ, ऐसा मैनू सारे कहंदे ने। सतगुरु कहन लगे तू रोशन जमीर है, हां रोशन जमीर हाँ, दिमाग दा धनी है धनी हाँ, इत्थे रहना भी है हां महाराज रहना भी है, ते सेवा भी करनी है हां महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू बस लंगर दे पांडे ही मांझिया कर, बाकी छड। कहन दिल नंदलाल दा बड़ा टूटिया, हद हो गई, मैं दस भी दिता है, शायर हां अतालीक हां, रोशन जमीर हां, रोशन दिमाग हां, कोई लिखण पढ़न की सेवा दें दे, पढ़ाण की सेवा दें दे, लंगर दे भांडे मांझ कदी मांझे नहीं सन, दीवान दे लड़के सन, ते आप दीवानगी भी करते रहे, फिर अतालीक बने, हमेशा उच्चे उच्चे रुतबिया ते पिता रहा ते आप रहे, कदी मांझे नहीं सन। पर सतगुर ने कहा जे थे रहना ही तो फिर भांडे ही मांझा कर, रोज रोज लंगर दे भांडे मांजदियां और रंग रतड़ियां दी महफिल दे च रहिंदियां होयां, रंगे हुए मनुखां दी महफिल दे च रहिंदियां होयां, मन दी कालक हंकार मिटदा गया मिटदा गया मिटदा गया। सही मैने भांडे मांजना मन मांजना हो गया, शरदा नाल करे मनुख ऐसा हो जांदा। फिर माहौल ऐसा सी रंग रतड़ियां दी महफिल अभ्यासियां दी महफिल, शरीकां नूं किधरे पता चल गया, सौरा परिवार दुखी होके मुल्तान तो आनंदपुर साहब पहुंचया, भई हद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह ने कदर ही नहीं की थी, इन्ना रोशन दिमाग बंदा, इन्ना पढ़ा लिखा बंदा, नवाब ते शहनशाह जिन्हों दीवानगी बख्शते रहे ने, सतगुरु ने कदर नहीं की थी। शरीक जद पहुंचे ते नंद लाल नूं समझांदे ने, और रब दी नेत कोई रब नहीं करिश्मे करने हुंदे ने, जद शरीक पहुंचे सन उदों भी नंद लाल भांडे ही मांजदे पए सन, काले हथ भिजे हुए कपड़े देख के शरीकां ने समझाया, कोई गल नहीं, कोई खतरा नहीं, हुण तुसीं साडे नाल मुल्तान चलो, गुरु गोबिंद सिंह ने थोड़ी कदर नहीं की थी। भांडे मांजण ते रखे लंबी चौड़ी, जद नसीहतां करन लग पैने तो हुण नंद लाल दे बोल सुनना, नंद लाल अपने शरीकां नूं की कहंदे ने, नसीहा ता चंद गोही, नसीहत करन वाले हो नसीहत ना करो, उपदेश देन वाले हो मैनू उपदेश ना दो, नसीहा ता चंद गोई। कहिंदे ने शरीक समझा रहे सन, नंद लाल जवाब पे देंदे सन, पर एक पासे खड़े होके सारी गुफ्तगू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सुन ली, सुने पहुंच गए, ते हुण शरीकां दे सामने जो सतगुरु कहिंदे ने नंद लाल नूं, असी तैनू कोई चंगी सेवा नहीं दे सके, तू कलम दा धनी दिमाग दा धनी रोशन जमीर, असी तैनू कुछ नहीं दे सके, तैनू ते बहुत कुछ देना चाहिदा सी। शरीकां दे सामने सतगुर इंज कहंदे ने, असी तैनू कुछ नहीं दे सके, ते हुण नंद लाल जो कुछ कहंदे ने ये सुन लेना। मैं आखिरी पंक्तियां छेती छेती समाप्त करा, समा हो गया। नंद लाल जो हाथ जोड़ के बेनती कर रहे, ये कीमती पंक्तियां ने, बड़ी कीमती पंक्तियां ने, दीवाने गोया दिया, गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस, ہوائے سلطنتو و ذوق کج کو لاہی نیس. اے میرے بادشاہ کوئی بھول کے وی تھوڑی گلی چو لنگ جائے نا او دو جہانا دی بادشاہت نو ٹھکرا دینا ہے. تی جیڑا لنگ جائے او اتنا مالا مال ہو جاندا ہے. میں تے بوا مل کے بیٹھا ہویا, میں تے در تے بیٹھا ہویا, مینوں کیڑی چیز دی کمی. جیڑا لنگ جائے تے مالا مال ہو جاندا ہے, تے جیڑا ہر وقت قدماں دے چرندا پیا ہے اودے کول کیڑی چیز دی کمی. گدائے کوئے تورا تیری گلی دا جیڑا منگتا ہے او بھی بادشاہ بن جاندا ہے. تیری جی گلی دا جیڑا بکھاری ہے وہ بھی شہن شاہاں دا شہن شاہ بن جاندا ہے. گدا ہے, گدا کہندے نے بکھاری نو, کوئے کہندے نے گلی نو. گدا ہے کوئے تورا میلے بادشاہی نیس, ہوائے سلطنت و ذوق کج کو لاہی نیس. اے میرے بادشاہ بھول کے کوئی منگتا تھوڑی گلی چو لنگ جائے دو جہاناں دی بادشاہت نو ٹھکرا دیندا ہے, اتنا مالا مال ہو جاندا ہے. تے مہاراج پھر مینوں کی کمی ہے, میں تے در مل کے بیٹھا ہوں, میں تے اس جگہ بیٹھا ہوں. کہندے نے کرت کول کی منگنا, کرتے کول منگنا. کرت کول منگتا ہے جنم تو لے کے مرن تک منگتا ہی بنیا رہے گا. کرتے کول منگدا ہے بادشاہاں دا بادشاہ بن جائے گا, شہنشاہاں دا شہنشاہ ہو جائے گا. اور کتنا ہی جگت نو سمجھاؤ کہ گرو کول نہیں منگدے, بندیاں کول ہی منگدے. یہ پرماتما اگوں پرارتھنا نہیں کرتے, اپنے دکھاں دے نویرتی دی ادھر ادھر رولا پاندے نے, اور جڑے آپ دکھی ہوندے نے انہاں دے اگوں جو ہے فریاداں کردے نے, جودڑیاں کردے نے. سدگور دیو جی مہاراج ایتھے فرمان پے کردے نے, اے پربھو تیرے کول جے منگی ہے تیری لات دے نال ہی رجے میں, اونج رجے واں نہیں ہے. ہاں جی.
2: آنند پیا سکھ سہج سمانے ستگور میل ملائی.
1: پربھو تیری لات رجا دین دیئے, مہان بنا دین دیئے, شہنشاہاں دا شہنشاہ بنا دین دیئے, تو انم دی پراپتی ہو جاندی ہے, نوند نام دی پراپتی ہو جاندی ہے, کھیڑا تے خوشی میسر ہو جاندی ہے, لوب اندر دا شانت ہو جاندا ہے, مٹ جاندا ہے. ہاں جی.
2: من نام جاپ نام آرادھ آن دن نام وکھانی.
1: اے من تاں تے تو آن دن نام جپ, نام دے جو ہے دھیان جوڑ, دن رات نام ہی جپ, نام ہی جپ, نہ منگ منک کول. ہاں جی.
2: اپدیش سن ساد سنتن کا سب چکی کان جمانی.
1: سنت جنا دا اپدیش سن, گرو پیر پیغمبران دی بانی سن, تاکہ جمان دی متھاجی لوکاں دی متھاجی تیری مٹ جائے, بندیاں کول منگنا تیرا مٹ جائے. ہاں جی.
2: جن کا کرپال ہوا پرب میرا تے لاگے گر کی بانی.
1: رحمت ہو جاندی ہے, کرپا ہو جاندی ہے, پوربلے سنجوگ آدھے نے, او پربھو پھر تیری بانی نال ہی جڑتے ہیں, تیرے کول ہی منگتے ہیں. ہاں جی.
2: قیمت کون کرے پرب تیری, تو سرب جیاں دے اللہ.
1: اے پربھو جو تیری دات ہے وہ کی قیمت, وہ سیما دچ نہیں ہے, تیرا دتا ہویا سیما دچ نہیں ہے, اسیم ہے, اسیم ہے. میں ایسا دیکھے اگر کوئی انبھوی کوی ہے تو وہ بھی کہہ دیندا ہے کوتا دا انت نہیں ہے, اسیم ہے, اسیم ہے. سنگیت دا انت نہیں ہے, اسیم ہے, اسیم ہے. گیان دا انت نہیں ہے, اسیم ہے, عظیم ہے. تے ہے پریپورن پرماتما پدارتھاں دا بھی کوئی انت نہیں ہے, اسیم نے, اسیم نے. تو اسیم ہے, تیریاں داتاں بھی اسیم نے. اے پریپورن پرماتما کون قیمت پاوے, کون ناپے, کون تولے. تو منک نو مہان بنا دینا ہے کیونکہ تیری داتاں اسیم نے, جنہاں دا کوئی مل نہیں, کوئی قیمت نہیں.
2: سب کچھ کیتا تیرا ورتا کیا ہم بال گوپالا.
1: اے پریپورن پرماتما سب کچھ تیری کرت ہے, اسی تے تیرے بچے ہاں, تو ساڈا پالن ہارا ہے, پتا دی طرح ہے, اسی تیرے بارک ہاں. ہاں جی.
2: राख लेहो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत।

0: समा हो गया, बाकी विचारा कल। दूसरी बेनती है, कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनोपुर का लै, जिन्हां नाल दास दा बड़ा पुराना प्यार से, 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया। बड़ियां खेड़ां मैं उन्हां दे नाल देखियां, उन्हां कोल देखियां, बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक का दीवान कल का कन्नूपुर कॉलेज सजेगा। दास के नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने, प्रचारक आए हुए ने, कवि सज्जन ने, ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे। तो दास भी 4 तो 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलता रहेगा 6-7 बजे। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है, जिन्हां कोल समा, वैसे कल इतवार है, तो बाबा जी की तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां। जिन्हां ने जाना है वह गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वह 2 बजे इत्थे पहुंचण की कृपालता करन, बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां, वह संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना। फुल सुग दी शमा वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
2: महला पंजवां मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहो करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया। मानुख बिन बुझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहो करता, ज्यों मृतक

करके दुखी है, मां मन करके दुखी है। बच्चे दे ताप नूं जद मां ने अपने हिरदे विच वसाया तो ओ सारी रात चैन नाल सो नहीं सकी। एक बच्चे दा दुख ते जद उस दुख नूं हिरदे विच वसाया ते मां सारी रात चैन नाल सो नहीं सकी। ते जद सारी दुनिया दा गम सारी दुनिया दा दुख ओनू गुरु नानक ने अपने हिरदे च थां दित्ती तो चैन नाल सुल्तानपुर किस तरह रह सकते सन, वो आराम नाल अपने परिवार विच किस तरह रह सकते सन। आप नू सारे दा सारा संसार जलदा होया दिखाई दिता, आपने रटन आरंभ कर दिता। ते आप दे रटन विच पहले चोटी दे तीरथ ने, तीर्थां ते ही रटन क्यों कीता? पहली उदासी विच गुरु नानक देव जी महाराज ने, दरअसल तीरथ धर्म दे चश्मे सन, ते जे चश्मा ही गंदा है ते लोगां नूं पानी गंदा मिलना सी। इस वास्ते गुरु नानक ने पहले चश्मिआं नूं निर्मल करन दी सोची तो थां थां ते आप तीर्थां ते पहुंचे ते तीर्थां दे मुखियां नूं सच दी गल सुनाई, सच नाल जुड़न दा ढंग दसिया। सच की है, ओदी होंद की है, ए जगत दे सामने सारी विचारधारा रखी। ए आप दी पहली कोशिश, जगत दे संबंध च आप दे विचार ए कि जाली रैण जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही थेती। दिन एक जाल है, रात भी एक जाल है, दिन ते रात दियां घड़ियां ए भी फाइयां ही ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कवन गुणे। ए जीव तरह तरह दे रस चोगदा है दिन नूं रात नूं, तो इस तरीके नाल रात उस लई जाल बन जांदी है, दिन उस लई जाल बन जांदा है। हर दिन कुछ ऐसा हो जांदा है कि दिन एक विपता दिखाई देंदी है, हर रात कुछ ऐसा हो जांदा है कि हर रात कयामत दिखाई देंदी है। तो दिन जाल बन गया, रात जाल बन गई, और इस जाल विच सारी मनुखता आप नूं फसी हुई दिखाई देती। फिर मनुखी मन बारे सतगुरां दे ए विचार कि काया अहरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। एक काया ते अहरण है और मन लोहा है, ते इस मन लोहे नूं पंज अग्नियां हर वक्त तपा के रख दियां, तपया ही रहिंदा है ये लोहा। क्रोध दी अगन, लोभ दी अगन, काम दी अगन, मोह दी अगन, अहंकार दी अगन। काया अहरन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। जे किधरे अग ठंडी पैंदी है, कोयले मध्यम पैंदे ने, अग बुझण लगदी है, तो सतगुरु कहंदे ने पाप दे कोले होर पा दिते जांदे। और इंज ए पंजे अग्निया पूरन जोबन दे उते भड़क उठदियां ने, ते सन्नी की है जेदे नाल लोहे नूं परती दा है, परत परत के रखी दा है। साहिब कहंदे ने मन जलिया सन्नी चिंत भई, सन्नी ते चिंता है। तो चिंता दे च मन उलट पुलट होंदा रहिंदा है। कबाबे सीख हैं हम करवटे हर सू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। तो चिंता मन नूं कदी इस पासे कदी उस पासे इंज पलटती रहिंदी है, ते मन दियां ही करवटां तन दियां करवटां बन जांदियां ने। जद अंदर चिंता है तो मन करवटां लैंदा है, ते जद मन करवटां लैंदा है तो बंदा आराम नाल किस तरह सो सकेगा? तन भी करवटां लैंदा रहेगा। जिहड़ा बंदा सारी रात करवट लैंदा रहे कदी इस करवट ते कदी उस करवट, ओह तां समझ लो सारी रात वर्जिश करदा रहे, एक्सरसाइज करदा रहे,
ਉਹ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਉਂ ਉੱਠੇਗਾ